0: ये है
1: लाइका रेडियो
2: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
3: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
2: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
3: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
2: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
3: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ अमेनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
2: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
3: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757 Greens by Danu Prime location
2: High appreciation
3: in Dubai
4: Tu hi tu agar meri ye hawaein teri tu agar
5: Durandar 15th and 16th of August at 9 PM on Star Gold
6: Target sponsor One podcast one mobile app Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales@leicamedia.co.uk. Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

0: Breaker Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danio. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 01163325100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में.
4: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
0: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favourite shows. Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

0: Like our radio.
1: Birmingham Hodge Hill, this is not a drill. This is not a drill. Pepe's is now open at 606 to 608 Bromford Lane. Get your chicken rice, chicken XL, flame grilled wings, strips, burgers, burritos, and banging salads, all packed with peppalicious flavour. Birmingham, come and get it. Birmingham, come
2: and get it. भोजपुरी बवाल।
3: पवन जी, मैंने सुना है आप दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं है।
4: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो।
5: कहाँ सही झगड़ा चलता भाई।
2: द ब्रांड न्यू रियलिटी टीवी शो भोजपुरी बवाल, मंडे टू संडे एट 10 PM ऑन कलर्स टीवी।
6: बॉलीवुड्स बिगेस्ट 90s सॉन्ग्स।

मुंबई। सुना था यहाँ आदमी पूरी जिंदगी अपनी किस्मत स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक लाने में निकाल देता है, पर ढाई घंटे में मेरी किस्मत ऐसे स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक पर आ जाएगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सजा मजा बन जाएगी, ये भी कभी सोचा नहीं था। लास्ट लोकल क्या छुट्टी साला, किस्मत पटरी।

होता है अच्छे के लिए होता है। सही कहते हैं। Radio Wally takes you on a journey of hit tracks every evening at 7 p.m.

0: Striker Radio Network across London, Manchester, and the Midlands.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल protected. Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. That's 020-3773-633. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
3: ये है लाइका।

जिंदगी। लिसन टू लाइका गोल टू ऑन लाइका रेडियो मोबाइल ऐप लाइका रेडियो डॉट कॉम एंड एलेक्सा प्ले लाइका गोल टू। Subscribe to the Leica Radio YouTube channel by searching Leica Radio UK.

ये है लाइका रेडियो, लाइका रेडियो, द बॉलीवुड किंग बाली ब्रह्मभट्ट विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड क्लासिक्स एवरी वीकडे एट 1 PM.

सो मैं विसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जागले, जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछे के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतियां गुण दे। तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे। सुनिए।

मन बुद्ध मन्ने सगल पौन की शुद्ध मन्ने मोह चोटा ना खाए मन्ने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए मन्ने मग ना चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध।

वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

भगत रसाले, और केते गावन से मैं चितनावन, नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई, है भी हो

अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साचे।

0: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
1: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
0: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
2: कुछ शामें कैलेंडर में नहीं, दिल में हमेशा के लिए बस जाती है। इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लेकर आ रही है एक यादगार म्यूजिकल इवनिंग लाइव इन कॉन्सर्ट। सैटरडे द 5th ऑफ सितंबर एट द प्लैटिनम सुइट लेस्टर। अपनी सीट्स आज ही रिजर्व कीजिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल मिस्टर बी ऑन 07860280655। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।

0: दीजिए मदन मोहन के म्यूजिक पर और लता जी की खूबसूरत आवाज में ही रांझा फिल्म का ये गाना आपने सुना, और उससे पहले किशोर दा की आवाज में आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। और देखिए ये गाना हमारे आज के विचार से कितना मिलता जुलता है, जिसे हमारे विजय जी ने हमारे साथ शेयर किया है कि बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दोनों ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा ले जाते हैं। इसलिए बीते हुए पल के बारे में सोचना बंद करें और आने वाले पल की चिंता भी ना करें। आज अब जो पल है आपके पास उसमें ही जिए, उसी में अपनी खुशियां ढूंढें। आज का विचार, और चलिए इसी खूबसूरत विचार के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और आपको बता दूं कि ये है लाइक अ रेडियो नेटवर्क, जहां पर ऋतु शर्मा है आपके साथ एक बार फिर से 10 से 1 आपका साथ देने के लिए। और जितने भी साथी हमारा साथ दे रहे हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। आप सुन रहे हैं लाइक अ रेडियो नेटवर्क, जो है लाइक अ गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड मिडलैंड्स। और आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं जिसमें बहुत सारी खूबसूरत बातें लिखी हैं जिन्हें प्रोग्राम में जरूर शामिल किया जाएगा। लेकिन उससे पहले सुनवाती हूँ अगला गाना, और उस अगले गाने से भी पहले ये हो जाए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो भारत पैसा भिजवाने की सोच रहे हैं वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप, देन आज 1 पाउंड आपको देगा 128.65 भारतीय रुपए।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Laika Radio. Laika
3: Radio. This part of the show is brought to you by Star Plus,
4: previously known as Utsav Plus.
3: Sky Channel 705, Virgin Media 803 and BT 392.
5: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 LBS सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ £1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ £29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू, और हर्जमन बटर 20 kg सिर्फ £10.99।
6: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE1 2JU एंड 2A रोलॉट सेल लिस्टर LE5 4UN।
7: लेस्टर तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्ले बैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
8: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Laika Radio.
9: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116-266-6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
10: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Baidyanath with over 100 years of Ayurvedic legacy.
11: Siddhayu, now available at Deepak Foods Thornton Heath. Location, location, location.
12: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
12: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location.
11: High appreciation.
12: In Dubai.
13: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at 3 Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton 3 Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
14: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit heartyhanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit heartyhanks.com today. Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit heartyhanks.com today. Hearty Hanks. Build your future before someone else does. Visit heartyhanks.com today.
2: Punjab, the biggest tunes.

0: तेरी।
1: सुनो लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते, लाइकारेडियो.com ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी। पंजाबी
2: भोजपुरी बवाल।
3: पवन जी, मैंने सुना है आप दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं है।
4: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो।
5: कहां से ही झगड़ा चला था भाई।
2: द ब्रांड न्यू रियलिटी टीवी शो भोजपुरी बवाल, मंडे टू संडे एट 10 PM ऑन कलर्स टीवी।
6: तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो।
7: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
8: Good track brought to you by Dairy Valley.
9: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: जतिन ललित के म्यूजिक पर कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में खामोशी द म्यूजिकल से लिया था ये गाना, और मुझे तो लगता है कि इस गाने के लिए जतिन ललित को भी बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें सिर्फ नॉमिनेशन मिला। लेकिन अवार्ड जीता कविता कृष्णमूर्ति ने, जिन्होंने इस गाने को गाया। और इस फिल्म के लिए मनीषा कोइराला ने भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। आपको बता दें कि आज मनीषा कोइराला अपनी हैप्पी वाली बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं और आज वो 56 इयर्स की हो गई हैं। Feel good track
1: brought to you by Dairy Valley. Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो आज मनीषा कोइराला की हैप्पी वाली बर्थडे है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज वो 56 इयर्स की हो गई हैं और हमारे 90s की बड़ी ही खूबसूरत हीरोइंस में उनकी गिनती होती है। और आप सब जानते हैं कि मनीषा कोइराला नेपाल के एक बड़े ही प्रतिष्ठित और राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके जो दादाजी थे ना, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उनके फादर प्रकाश कोइराला भी नेपाल सरकार में मंत्री रहे हैं। सुभाष घई ने इनकी खोज की थी, इन्हें सौदागर फिल्म में काम दिया था जिससे उनकी बॉलीवुड में एंट्री हुई थी, जिसमें उन्होंने बड़े बड़े दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार, राजकुमार के साथ काम किया था। और उसके बाद तो उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम भी किया, अवार्ड भी जीते, और उन्हीं में से एक फिल्म थी जिसका की गीत मैंने अभी आपको सुनवाया और आप सबने उसे पसंद भी किया। ये है, ये है।
2: Like a radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: तो चलिए, आपके ढेरों मैसेजेस मुझे मिले हैं जो बता रहे हैं कि ऋतु हमारे साथ हैं, उन पर एक नजर डालेंगे, लेकिन फिलहाल एक और गाना हो जाए मेरी ओर से आप सबके लिए।

0: किशोर कुमार और लता जी की आवाज में ये थी एस डी बर्मन की धुन, जिसे लिया था 1974 की फिल्म प्रेम नगर से। और आप सुन रहे हैं लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर ऋतु शर्मा है आपके साथ।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
0: तो चलिए, समय आ गया है कि आप सभी के मैसेजेस पर एक नजर डाल ली जाए। हमारी प्रज्ञा का कहना है कि लगता है आज मेरी प्लेलिस्ट होगी। अब ये तो पता नहीं, प्लेलिस्ट में पहले से नहीं बना के आती, यहाँ पर बन जाती है आगे। और अगर आपकी प्लेलिस्ट के गाने बज रहे हैं तो इंजॉय कीजिए, आप हमारा साथ दे रही हैं, जानकर बहुत खुशी है। थैंक यू अर्जुन जी। दिनेश पोपट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जासू जी गुड मॉर्निंग। और शब्बीर कुमार जी का कहना है, शब्बीर जी का कहना है दरअसल कि आज तो मैं घर पर ही हूँ, कहीं जा नहीं रहा हूँ, और तेज आवाज में आपका प्रोग्राम सुनने वाला हूँ। क्या बात है। और आपने चार लाइनें भी लिखकर भेजी हैं। लिखते हैं, गहराई प्यार में हो तो बेवफाई नहीं होती, गहराई प्यार में हो तो बेवफाई नहीं होती, सच्चे प्यार में कभी तन्हाई नहीं होती, मगर प्यार जरा संभल कर करना मेरे दोस्त, क्योंकि प्यार के जख्म की कोई दवा नहीं होती। हाय, ये तो बड़े दिल जलो वाली बात आपने की है आज। वेरी नाइस, थैंक यू साथ देने के लिए। थैंक यू विजय जी, आप हमेशा हमारा साथ देते हैं, सुंदर विचार हमारे साथ शेयर करते हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं। थैंक यू गिरीश जी, कहते हैं कल छुट्टी थी इंडिपेंडेंस डे की, तो कल मैं आपका साथ नहीं दे सका, तो कल का दिन आपने कैसे बिताया, लेकिन आज आप हमारे साथ हैं, जानकर खुशी है, स्वागत है आपका। थैंक यू प्रतिभा जी, अनिल सोनी जी वियाना से। थैंक यू मैकमारू जी, आपको पसंद आया आने वाला कल गीत, चलिए आपके नाम किया। थैंक यू मालती जी, कहती है मुझे हमेशा ही वीकेंड पर आपकी आवाज़ सुनकर मजा आता है, क्या बात है, मुझे भी आपका साथ बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, थैंक यू रोशनी जी। थैंक यू राजेश जी, कहते हैं आपको एक बहुत ही सुखद और शांतिपूर्ण रविवार की शुभकामनाएं, मैं काम भी करता रहूंगा और आपका साथ भी देता रहूंगा। बस यही तो हम कहते हैं, रेडियो सुनते रहिए, काम भी करते रहिए, इसका मजा यही है। थैंक यू, थैंक यू सहर जी, थैंक यू नरेंद्र भागिया जी, आपने भी चार लाइनें हमारे साथ शेयर की हैं। कहते हैं, अर्ज किया है कि रिश्तों की डोर कमजोर नहीं होती, आंखों की बातें दिल की चोर, रिश्तों की डोर कमजोर होती है, आंखों की बातें दिल की चोर होती है, रब ने जब भी पूछा दोस्ती का मतलब तो हमारी उंगली आपकी ओर होती है। क्या बात है नरेंद्र जी, थैंक यू इन चार लाइनों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आंटी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, स्लाव से सुरजीत जी हैं हमारे साथ, और ये लिस्ट आपकी बहुत लंबी है जिसे कंटिन्यू करूंगी, लेकिन पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर हॉलीडे का प्लान बना रहे हैं तो बस।
2: This is Laika Radio, the Ritu Sharma show, featuring classics non-stop with Ritu Sharma on Laika Radio. Brought to you by Southall Travel.
0: ये मैसेज आप ही के लिए है, साउथहोल ट्रैवल को कॉल कीजिए, उनके पास दुबई जाने के लिए बड़ी अच्छी डील्स चल रही हैं, उन्हें फोन कीजिए 02085748410 पर, और ये सब एट ऑल प्रोटेक्टेड भी है।
2: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is Ritu Sharma. One performer.
3: Countless personalities. A whole universe of entertainment. Sunil Grover live UK tour 2026.
4: 29th October, Ovo Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
3: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabhi to brand new surprises, experience Sunil Grover live on stage in the UK.
4: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
3: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
4: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Laika Radio Network.
3: History divided a nation but could never divide humanity.
5: Kaun si azadi aur kiska mulk?
3: Witness the epic reunion of Sunny Deol and Rajkumar Santoshi in Batwara 1947.
6: Oh, maa hai maa. Maa ko Hindu Musliman mein na baatiye.
3: Starring Shabana Azmi, Priti Zinta, Karan Deol and Ali Fazal.
6: Har bachche ke muh se nikla pehla lafz maa hai.
3: Produced by Aamir Khan. Experience the untold story of courage and hope. Batwara 1947. Now in cinemas.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
8: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
7: High appreciation.
8: In Dubai.

0: आशा भोसले, मोहम्मद रफी साहब की आवाज और ओपी नैयर का म्यूजिक, फिल्म का नाम फिर वही दिल लाया हूँ जो 1963 में रिलीज हुई थी, जिसे आपने सुना आपके मनपसंद रेडियो लाइका रेडियो नेटवर्क से। और मैं हूँ ऋतु शर्मा आपके साथ और आप मेरा साथ देते जा रहे हैं। थैंक यू मौसुमा जी आपके मैसेज के लिए, थैंक यू वरुण जी, भरत गंगाराम जी, महेंद्र बजारिया जी, थैंक यू शेखर जी कहते हैं। देखते हैं आज की जोड़ी नंबर वन कौन सी है। अभी तो मैंने बताई नहीं है, बताती हूँ नेक्स्ट वाले आवर में। थैंक यू महेंद्र बजारिया जी, आपको किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में गीत पसंद आया, आपके नाम किया। थैंक यू हंसा जी, दिव्या जी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ऑफ कोर्स हमारे गुरुदेव गांजा जी, बिल्कुल आप हमारे साथ हैं, सो थैंक यू। उसके अलावा और भी मैसेजेस हैं जिन्हें पढ़ूंगी, लेकिन पहले ये बता दूं।
1: हेलो हेलो हेलो, वेक अप विद मी काजल ऑन द ब्रेकफास्ट शो वेयर आई टेक यू डाउन मेमोरी लेन, गेट इंस्पायर्ड बाय मॉर्निंग मंत्रा मंडे टू फ्राइडे 6 AM टू 10 AM, लाइक अ गोल्ड एंड लाइक अ रेडियो मिडलैंड्स।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 पाउंड आपको देगा 129 भारतीय रुपए, 376 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास।
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is LEICA Radio across the Midlands. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LEICA Radio.
0: The gold rate is 104.23 pounds per gram.
2: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
3: LEICA Radio.
2: LEICA Radio 90s. LEICA Radio Punjabi. LEICA Gold 2. Now available on the LEICA Radio mobile app and Alexa. LEICA Radio.
4: This part of the show is brought to you by Star Plus,
5: previously known as Utsav Plus,
4: Sky Channel 705, Virgin Media 803 and BT 392.

0: now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: Lester na Little Garba Stars taiyar thai jao. KDR Events and Beach Promotion proudly presents Kids Garba 2026 with Live from India. Saturday 17th October, Bapore 1-4 at Avanti Field School, Lester. 1-10 Varashna Kids Mate entry just £5. Tickets available from Ticket Source or call PHL 07957-477-330. Masti, music and a full-on Garba fun. Radio partner, Laika Radio.
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 0208

0: यस सुहाग फिल्म का था ये गाना। 1979 की फिल्म, अमिताभ बच्चन और रेखा की फिल्म, और उससे पहले कुमार सानू की आवाज में 1942 अ लव स्टोरी का वो खूबसूरत गाना जिसे आज प्रोग्राम में मैंने बजाया क्योंकि आज मनीषा कोइराला अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। शी इज 56 टुडे और हम सब जानते हैं ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस रही हैं। अभी हाल फिलहाल में ही उनकी संजय लीला बंसालिक का एक सीरीज आई थी हीरा मंडी, जिसमें उन्होंने मल्लिका जान का काम किया था और दर्शकों ने इस कैरेक्टर को काफ़ी सराहा। और हम सब जानते हैं कि किस तरह से उन्हें कैंसर हुआ था, ओवेरियन कैंसर हुआ था, और सभी उनके फैंस घबरा गए थे कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन अमेरिका में उन्होंने अपना इलाज करवाया और पूरी तरह से कैंसर को बीट कर दिया। और जानते हैं उसके बाद उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है आई थिंक हाउ कैंसर गेव मी अ न्यू लाइफ, यानी कि कैंसर ने मुझे जीवन को एक नया नज़रिया दिया, एक नए नज़रिए से समझाया, मुझे ज़्यादा मजबूत बनाया। तो आज मनीषा कोइराला की बर्थडे है, आज हम उनके गीत आपको सुनवा रहे हैं, लेकिन आपके भी ढेरों मैसेजेस मुझे मिलते जा रहे हैं। आंटी जी कहती हैं अमिताभ बच्चन का गाना बजे तो मैं अपने आप को कैसे रोकूं? आपको जरूरत भी नहीं है रोकने की, आपका मैसेज जरूर आता है। सो थैंक यू, ये गाना आपके नाम पर जाता है। थैंक यू संध्या भाव सर, आज तो आपकी खूब एक्सरसाइज हो रही है, किचन में काम कर रही हैं और ठुमके भी लगा रही हैं, तो बस ये करते रहिए। वैसे आप काफी पतली दुबली हैं, इतनी ज्यादा एक्सरसाइज की आपको जरूरत है भी नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत कर लिया कीजिए क्योंकि फिट रहने के लिए तो एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। मालती जी थैंक यू कहती है मैं तो वेट कर रही हूँ कि जोड़ी नंबर वन कब शुरू होगा, मुकेश जी और मनोज कुमार के गीत। यस अब से बस थोड़ी ही देर में शुरू करने वाली हूँ, बस थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। इसके अलावा हमारे गिरीश जी प्रोग्राम सुन रहे हैं और आपने गाने की फरमाइश की है, देखती हूँ गाना होता है या नहीं, है ना। थैंक यू जैस्मीन, थैंक यू। एंड ये कौन है जिन्होंने हमें याद दिलाया है, चंदू जी आपने हमें याद दिलाया। यस हमें याद है कि आज सैफ अली खान का भी बर्थडे है, जरूर उनका गीत भी सुनवाऊंगी, लेकिन उससे पहले कराची में जहीर खान सुन रहे हैं आपका स्वागत है, उलाज टोरंटो में हमारे साथ हैं, हमारी सुनीति हमारे साथ हैं, हिमांशु पटेल जी हैं, अमिता जी, प्रीति जी बेल्जियम से हैं, एंड जयंत जयवंते आप हमारे साथ हैं, दिव्या जी, और ये है योगेंद्र जैन, सभी का स्वागत है। और चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं जोड़ी नंबर वन का सिलसिला।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 आज आपको देगा 128.65 भारतीय रुपए, लेकिन ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: This part of the show is brought to you by Star Plus.
3: Previously known as Utsav Plus.
2: Sky Channel 705, Virgin Media 803 and BT 392.
4: नवरात्रि नी धमाकेदार रातों माटे थई जाओ रेडी। KDR Events and Beach Promotions proudly presents Navratri Festival 2026. 11th to 20th October, live from India. Garba, Dandiya, music and a full-on festive vibes. Every night from 7 PM at Avanti Field School, Leicester. Tickets just £5 the start. Book your tickets now on Ticket Source or call BJ 07957-477-330. Radio Partner, Leica Radio.
5: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
6: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
5: Live on Sunday the 1st of November. Nimura, nimura, nimura. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs.
6: With the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
2: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
3: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.

0: यस लता जी और मुकेश जी की आवाजों में था ये गाना फिल्म हरियाली और रास्ता से। और आज की हमारी जोड़ी में मैं आपको मुकेश जी और मनोज कुमार के कॉम्बिनेशन के गाने सुनवा रही हूँ। आपको बता दें कि ये जो फिल्म थी हरियाली और रास्ता, ये मनोज कुमार के करियर की टर्निंग पॉइंट वाली फिल्म थी। यानी कि इससे पहले मनोज कुमार की फिल्में आती तो थी लेकिन वो स्टार नहीं बन पा रहे थे, लेकिन ये फिल्म इतनी बड़ी सुपरहिट हुई कि उसके बाद मनोज कुमार के करियर को एक बड़ी उड़ान मिली। और माला सिन्हा तो इस फिल्म के आने से पहले ही सुपरस्टार थी। तो एक किस्सा बताती हूँ इस फिल्म से जुड़ा हुआ। दरअसल मनोज कुमार स्टार बने नहीं थे, माला सिन्हा बहुत बड़ी स्टार थी। और मनोज कुमार जब भी कोई रोमांटिक सीन आता था तो बहुत हेजिटेट करते थे, बड़े डरे सहमे से खुल के नहीं कर पाते थे। तो माला सिन्हा बार बार जाकर उनके सीन्स को चेक कर रही थी जब रिकॉर्ड हो जाते थे कि इसमें क्या गड़बड़ है क्या नहीं है। और मनोज कुमार को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन उनके फादर ने समझाया कि भाई ये वो इसलिए कर रही हैं ताकि फिल्म अच्छी बने, और अच्छी फिल्म होगी तो सबको फायदा होगा। और मनोज कुमार को ये बात समझ आई, उन्होंने बहुत सारी बातें माला सिन्हा से सीखी भी। और देखिए सीख इतनी काम आई कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई और मनोज कुमार भी माला सिन्हा की तरह एक स्टार बन गए।
1: Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो हमारे उल्लास कहते हैं कि भाई ये गाना तो ऋतु मेरी पसंद का था, चलिए फिर हमने आपके नाम किया।
1: Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.
0: और संध्या भावसर कहती है क्या जोड़ी चुनी है, हंसा जी, अमिता जी, तोची जी, फरीदा जी एंड हमारे अहीर गुनोवा यादव जी, क्या बात है, आप सब गीतों को पसंद कर रहे हैं। चलिए जोड़ी का अगला गाना आप सबके नाम पर।

0: जी हाँ, ये था लक्ष्मीकांत तो प्यारे लाल का म्यूजिक और हमारी जोड़ी नंबर वन का दूसरा गाना फिल्म पत्थर के सनम से। और गिरीश जी, आपको ये गाना अच्छा लगता है, चलिए आपको डेडिकेट किया। और महालक्ष्मी जी, आपने भी बड़े अच्छे दो गाने बजाने के लिए मुझे सजेस्ट किए हैं, लेकिन मैं इस जोड़ी नंबर वन में दो ही गाने बजाती हूँ, लेकिन मैंने आपके गाने नोट कर लिए हैं, आने वाले प्रोग्राम्स में जरूर गाना वो आपका बजाने की कोशिश करूंगी। लेकिन फिलहाल तो ये थे आज का जोड़ी नंबर वन के दो गाने।
1: दिस इज रितु शर्मा। बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड, मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड, रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए। एक्स्ट्रा
0: पॉडकास्ट अपडेट्स, तो आपको याद दिला दें कि इस बार का जो लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का टॉपिक है वो है इज गोल्ड रियली द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, और इसे होस्ट किया है रवि शर्मा ने। आप लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट सुन सकते हैं स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
2: ये है लाइका रेडियो, जिंदगी बर्बाद हो गया।
3: Get ready UK, Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi and more surprises on the night.
4: अगर आज लिखेगी तो कमलेश की लुगाई, 2 साल बाद लिखेगी तो बिट्टू की मम्मी।
5: Expect music, madness, family entertainment and non-stop laughter. Snell Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
3: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
5: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AX.
3: For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Leica Radio Network.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50% amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
9: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
8: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
9: गारंटेड
8: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
9: फोन 02085748410।
8: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।

0: अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में ये गाना सुपर हिट हुआ था और इस गाने से सुपरस्टार बन गए थे सैफ अली खान। उनकी फिल्म ये दिल लगी से था ये गाना। और आपको बता दें कि आज सैफ अली खान का भी बर्थडे है, यानी कि मनीषा कोइराला और सैफ अली खान दोनों बिल्कुल एक ही दिन एक ही ईयर में पैदा हुए हैं, 16th August 1970, और आज दोनों 56 ईयर्स के हो गए हैं, और इसीलिए ये गाना हमने उनके फैंस के नाम पर किया। और चलिए कह देते हैं सैफ अली खान को हैप्पी बर्थडे।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 पाउंड आपको देगा 129 भारतीय रुपए, 375 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: The gold rate is 104.23 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
2: Leica Radio.
1: Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: लीजिए धर्मेंद्र और आशा पारेख की फिल्म आए दिन बहार के से था ये गाना। और उस जमाने में जो लोग फिल्में देखा करते थे उनका कहना था कि ऐसा जादू था धर्मेंद्र और आशा पारेख का कि बस उनके नाम से फिल्में लग जाएं हिट हो ही जाया करती थी। और जब ऐसा म्यूजिक रहेगा तो फिल्में क्यों नहीं हिट होंगी। और मुझे लगता है कि पुराने जमाने में फिल्मों की कहानी से ज्यादा अच्छे उनके गाने हुआ करते थे। और हमारी जासू जी कहती है मजा आ रहा है, तो चलिए साथ देते रहिए।
1: Like our radio. This part of the show is brought to you by Star Plus.
2: Previously known as Utsav Plus.
1: Sky Channel 705, Virgin Media 803 and BT 392.
3: Leicester, tiyar ho jao ek yaadgar Bollywood night ke liye. Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor. Playback singer Aman Trika. Or female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
4: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Laika Radio.
5: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का Perfect Destination Rakhi और Ganesh Idols अब available हैं सभी Falcon Stores पर। ओनम संध्या के लिए pre-bookings भी शुरू हो चुकी हैं। Falcon Snacks 300 grams की full range सिर्फ £1.99 each। Mustafa Dehradunni Rice 20 lbs सिर्फ £13.49। Suhana Khaman Thokla 500 grams सिर्फ £1.99 each या 2 for £2.99। Tilda Grand Basmati 20 kg सिर्फ £29.96। S Motiram Namkeen अब सिर्फ 99 piece से शुरू और Herdsman Butter Ghee 20 kg still £10.99.
6: Falcon Cash and Carry 82A Syston Street West Leicester LE12JU and 2A Rollout Cell Leicester LE54UN.
7: Leicester's iconic hot potato shop is now serving up fresh flavor at Foss Park. After 45 years on Belgrave Road, we've rolled in with another brand new Airstream trailer, serving piping hot loaded jacket potatoes and fresh cut chips made to order. Open 7 days a week with generous portions and unbeatable taste. Find us outside M&S next to the Barclays Hub. Look for the shiny Airstream and grab your favorite today. Hot potato shop now at Foss Park.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
9: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master.

0: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
1: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
0: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
2: यू आर बोथ ऑन द सेम रोड, सेम टारमैक, सेम रूल्स, जस्ट अ डिफरेंट नंबर ऑफ व्हील्स। Motorbikes aren't in your way, they're on their way, just like you. So use your mirrors, check before you maneuver, and be aware of motorbikes. Because when we look out for each other, everyone gets where they're going safely. Motorbike safety, it's on all of us. National Highways.
3: If you see somebody showing any of the signs of a stroke, you don't have to think about it, you just dial 999. Use the FAST test. F, face. Has their face fallen on one side? Can they smile? A. Arms. Can they raise both arms and keep them there? S. Speech. Is their speech slurred? T. Time. Time to call 999 if you see any one of these signs. Act fast. Make the call. Dial 999.
4: It was just another day. A familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think, don't let your speed creep.
5: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर। ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी। लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS। कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में।
6: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount. Plus a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
7: Across the Leica Radio Network, this is Ritu Sharma.

0: खूबसूरत गाना, खूबसूरत आवाज, मोहम्मद रफी साहब की आवाज, फिल्म का नाम दिल ने फिर याद किया, और उससे पहले आपने लता जी की आवाज में प्रेम रोग फिल्म का ये गलियां ये चौबारा खूबसूरत गीत सुना। और लीजिए, इन दो गीतों के साथ प्रोग्राम के लास्ट एंड फाइनल आवर की शुरुआत हो गई है। और ये गाना ये गलियां ये चौबारा मैं डेडिकेट करती हूँ उन सभी महिलाओं को जो आज तीज का त्योहार मना रही है। बहुत सारे साथियों ने कल तीज मनाई, लेकिन आज भी कुछ हरियाली तीज मना रही है, तो उनको बधाइयां। भाई, हमने तो कल बहुत ही बढ़िया पार्टी इंजॉय की, या कहूँ तीज का त्योहार बहुत ही खूबसूरती से मनाया अपनी दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, यू नो, डांस, खाना पीना, गपशप, मस्ती मजा करके, तो खूब मजा आया। एंड आई एम श्योर आपने भी कल इसी धूमधाम से तीज का त्यौहार मनाया होगा, और अगर आज मना रहे हैं तो हमारी ओर से आपको उसकी ढेरों बधाइयां। यह है प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर, और योगेंद्र जैन कहते हैं कि कहां से लाती हैं ये शानदार गीत। अरे बस ये क्या होता है, मैं कंप्यूटर में घूमती रहती हूँ, जब तक गाना बजता है ना तो कंप्यूटर को चैन से बैठने नहीं देती हूँ, और जब भी कोई अच्छा सा गाना लगता है मुझे ये आपको पसंद आएगा, पकड़ के बजा देती हूँ, बस यही है। सो थैंक यू साथ देने के लिए। और प्रज्ञा कहती है ये गलियां ये चौबारा मैंने मिस कर दिया, ओ तेरे की क्या कर दिया, अब दोबारा पता नहीं कब बजेगा, मैं क्या करूं, अब तो मिस हो गया, तभी तो कहती हूं कि मेरे शो से दूर जाने का नहीं। एनीवेज, आप मुझे पता है आलू के पराठे बना रही है, लगता है उसमें ज्यादा खो गई। एनीवेज, शर्फून आप हमारा साथ दे रही हैं, थैंक यू। थैंक यू विजय गुडोरी जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू संध्या भावसर कराची से, जहीर जी थैंक यू, एंड अहिर गुनोवा जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारी लिस्टर है महालक्ष्मी, थैंक यू आपके भी मैसेज के लिए। कहती हैं आप कि रोज रोज बढ़ रहा है दाम गोल्ड का, और रोज रोज बढ़ रहा है शान गोल्ड का, क्या बात है ऋतु, खुश हुई ये सुनकर। क्या सोचा है कमाल, थैंक यू महालक्ष्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और अब बात कर लेते हैं आज के थ्री वर्ड्स गेम की। हमेशा ही इस वाले आवर में हम थ्री वर्ड्स गेम खेलते हैं, जिसमें एक बॉलीवुड के किसी गाने से मैं तीन वर्ड्स पिक करती हूँ, शुरू की तीन चार जो लाइन्स होती हैं उनसे, और आपको पहचानना होता है कि गाना कौन सा है, और जो काम आप आसानी से कर भी लेते हैं। तो चलिए आज के जो तीन वर्ड्स हैं जिनकी मदद से आपको गीत पहचानना है, पहला है फिजाओं, दूसरा वर्ड है इशारों, और तीसरा वर्ड है बहारों। 1962 में आई थी ये फिल्म, शंकर जयकिशन का म्यूजिक है और मुकेश जी की आवाज है। अब तो हो गया ना आसान। बहुत ही पॉपुलर गाना है और आज का गीत आसान भी है पहचानने के लिए। फिजाओं, इशारों, बहारों, 1962 की फिल्म है, शंकर जयकिशन का म्यूजिक है और मुकेश जी की आवाज है। सोचिए और हमें बताइए कि ये गाना कौन सा है। अगर आपको पता चलता है तो भेजिए अपना मैसेज हमारे इस नंबर पर।
1: WhatsApp Leica Radio Midlands now on 07404-793-719.
0: तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से दोहराती हूँ, फिजाओं, इशारों, बहारों, 1962 की फिल्म, शंकर जयकिशन का म्यूजिक, मुकेश जी की आवाज, कौन सा है ये गाना?
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो £1 आज आपको देगा 128.65 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI यूके मोबाइल ऐप।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.com. Leica Radio.
2: This part of the show is brought to you by Star Plus,
3: previously known as Utsav Plus,
2: Sky Channel 705, Virgin Media 803 and BT 392.
3: Let's मिस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादून राइस 20 LBS सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99।
4: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE1 2JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE5 4UN।
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: Lester na Little Garba Stars taiyar thai jao. KDR Events and Beach Promotion proudly presents Kids Garba 2026 with Live from India. Saturday 17th October, Bapore 1-4 at Avanti Field School, Lester. 1-10 varsh na kids mate entry just £5. Tickets available from Ticket Source or call PHL 07957477330. Masti, music and a full on Garba fan. Radio partner, Laika Radio.
7: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
8: No more worries for me or you.
9: Southall Travel. At all protected.
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
10: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
10: High appreciation.
11: In Dubai.
12: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester. With grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favorites. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
13: Bollywood's biggest 90s songs. None.

0: लता जी की आवाज में ये शानदार गाना, और आप जानते हैं लता मंगेशकर ही है हमारी इस बार की आर्टिस्ट ऑफ द वीक। राम तेरी गंगा मैली फिल्म से था ये गाना, राज कपूर ने जिसे डायरेक्ट किया था और रविंद्र जैन का इस फिल्म में म्यूजिक था। और इस फिल्म से जुड़ी एक बात मुझे याद आई है, आपको बताऊं कि सबसे पहले इस फिल्म में राज कपूर शशि कपूर की बेटी संजना कपूर को लॉन्च करना चाहते थे और वो सोच रहे थे कि उनके अगेंस्ट कोई नया लड़का लेकर आएंगे, लेकिन संजना कपूर ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। तो फिर उन्होंने अपने भाई, अपने छोटे बेटे संजय कपूर को लॉन्च किया और फिर मंदाकिनी को लेकर आए ऑपोजिट रोल के लिए। और इस तरह से इस फिल्म में संजय कपूर और नहीं संजय कपूर मैं कहाँ से बोल रही राजीव कपूर है उनके छोटे बेटे का नाम, राजीव कपूर को उन्होंने लॉन्च किया और फिर उसके साथ उन्होंने मंदाकिनी को फिल्म में काम दिया। और इस तरह से इस फिल्म में राजीव कपूर और मंदाकिनी की जोड़ी बनी। ये था गाना फिल्म राम तेरी गंगा मैली से आर्टिस्ट ऑफ द वीक का गीत। और अब शुरू करने वाली हूँ आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला। सुनवाती हूँ आपका पहला गाना लता जी और मन्ना डे की आवाजों में, और हमारा थ्री वर्स गेम भी चल रहा है, बहुत सारे आंसर्स मिले हैं। और कमाल की बात यह है कि अब तक कुछ को छोड़कर ज्यादातर सबने सही जवाब दिया है। और मुझे पता है कि आप एक गाना है जिससे थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं, ये सोचिए सोचिए, ईयर पे ध्यान दीजिए, 1962 की फिल्म है और म्यूजिक डायरेक्टर पर ध्यान दीजिए, शंकर जयकिशन है म्यूजिक डायरेक्टर, फिर आपको सही आंसर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला, सुनवाते हैं पहला गाना।
1: This is Leica Radio. Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: यहाँ बिल्कुल मस्ती भरा है समा और गाना भी है मस्ती भरा। राज कपूर और मला सिन्हा की फिल्म जिसमें म्यूजिक है दत्ताराम वाटकर का, और ये है हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना। इस गाने को सुनकर ढेरों मैसेजेस आए हैं, तो बस थैंक यू सो मच। गीतों को आप एंजॉय कर रहे हैं, सुनवाती हूँ आपको एक और यानी कि अगला आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का गीत।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: लेकिन अगला गीत बजाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप देख सकते हैं दिवाली स्टोरी एट ओवो अरीना वेम्बली में ऑन संडे 27 सितंबर। अगर आपने अभी तक टिकट्स बुक नहीं कराए हैं तो diwalistory.com पर जाकर आप टिकट्स बुक करा सकते हैं। और याद रखिए लाइक और रेडियो नेटवर्क है इस प्रोग्राम के एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स।
1: The Ritu Sharma Show on Laika Radio.
3: Laika Radio.
1: This is Ritu Sharma.
3: Laika Radio.
4: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: क्या खूबसूरत गाना है आशा जी और मीनू पुरुषोत्तम की आवाजों में, और क्या म्यूजिक बनाया है ओपी नैयर ने। ये था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना फिल्म ये रात फिर न आएगी से। थैंक यू दिनेश सॉरी जी आपके मैसेज के लिए। थैंक यू अमिता जी, थैंक यू। ये है हमारी प्यारी लिसनर जिनका नाम क्या है, मैसेज जब भी लिखते हैं नाम लिख दिया कीजिए। सुनीता लाल हाँ लिख रही हैं कि भाई मुझे मजा आ रहा है शो में और आप समोसे बना रही हैं क्योंकि फ्रेंड्स के साथ और अपने पति देव के साथ आप बंटवारा 47 देखने जा रही हैं और साथ में समोसे बनाकर ले जा रही हैं। आहा क्या मजा है, यानी कि फिल्म की फिल्म, मजेदार सनी देओल की फिल्म और साथ में गर्मा गर्म समोसे। देखो कहते साथी मुंह में पानी आ गया। चलिए मजे के साथ देख कर आइए और फिर अगले हफ्ते मुझे बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। और इसके अलावा बहुत सारे साथियों ने आंसर्स दे दिए हैं और जिन्होंने जवाब दिए हैं उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। महेंद्र बजारिया जी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, शरफून उल्लाश, विजय गुडूरी जी, हाजरा जी, दिनेश पोपट जी, प्रीति बेल्जियम से, नीलेश तन्ना जी, माया जी वाटफट से, रजनीश जी, गीता जोशी, मीना शाह, गिरीश जी ईलिंग से, किरण हैरो से, संध्या भावसर, भरत गंगाराम जी, उषा कोड़ा एंड हमारी मालती जी, आप सभी ने गाने को सही सही पहचान लिया है। तो गाना मैं आपसे थोड़ी देर में बजाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि भैया उदित नारायण अगर आप के भी फेवरेट है मेरी तरह तो आप इस इवेंट को मिस नहीं कर सकते हैं क्योंकि 90s बॉलीवुड लेजेंड उदित नारायण परफॉर्म करने जा रहे हैं विद सन आदित्य नारायण एट ओवो अरीना वैमली ऑन संडे 20th December। टिकट्स अवेलेबल है टिकट मास्टर एंड AXS पर। इसके एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है प्लेका रेडियो नेटवर्क और आप इस शो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो जल्दी से अपनी टिकट्स बुक कराइए।
1: हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथोल ट्रैवल।
0: हॉलीडे जाने की सोच रहे हैं तो हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि दुबई के लिए अच्छी डील्स हैं साउथ हॉल ट्रैवल के पास। उन्हें फोन कीजिए 0208574 8410 पर।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio.
2: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
3: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
4: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.

0: जी हाँ बिल्कुल, मुकेश जी की आवाज में था ये गाना, और ये गाना था हमारे आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना, जिसे ज्यादातर सभी साथियों ने सही सही पहचाना, जिसमें काम किया था राज कपूर ने, नंदा ने, पद्मिनी ने और शंकर जयकिशन का म्यूजिक था।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स, गुडनेस इन एवरी बाइट, ट्राई इट टुडे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
2: ये है लाइका रेडियो।
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 129 भारतीय रुपए, 375 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. LEICA Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. With the UK's biggest Asian hits. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: The gold rate is 104.23 pounds per gram.
3: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
2: Leica Radio.
0: लीजिए, अब तो जाने की बेला आ गई है। थैंक यू मालती जी, संध्या जी, गीता जी, महेंद्र जी, जैस्मीन, विजय जी, सूरज जी, बहुत सारे साथी जो हमारा साथ दे रहे हैं सुबह से लेकर अब तक, उन सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि अगला गीत लेकर चलेगा न्यूज तक, और न्यूज के उस पार यहाँ मैं नहीं होंगी, होंगे यहाँ होंगे अनुराग, गोल पर आपका साथ देंगे, मैनचेस्टर पर होंगे लाइका रेडियो मैनचेस्टर पर जय आपके साथ होंगे, और लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर एन आनंदी आपका साथ देंगी। लेकिन हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले हफ्ते फिर से, नेक्स्ट सैटरडे आपसे फिर से मिलूंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, और सुनने में आ रहा है कि टेम्परेचर थोड़ा नीचे जा रहा है, इसका मतलब हम सबको थोड़ी सी राहत की सांस मिलने वाली है, तो मौसम को एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मेरा इंतजार करते रहिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।
3: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
4: Hey there, main hoon Bali Brambat. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, ansuni baatein, raag adharit gaane on Leica Gold and Leica Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.
2: Ye hai
5: Leica Radio.
6: This part of the show is brought to you by Star Plus,
7: previously known as Utsav Plus.
6: Sky Channel 705.

0: Asha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन.
2: दर्द से पुराना रिश्ता है मेरा.
3: द वेट इज ओवर. Imran Hashmi returns in the next chapter of a cult classic, Avara Pan 2.
2: Usse mujhe chua, par apna aaya nahi.
3: Now in cinemas. For your nearest cinema listings, visit Bakronia Media on Instagram.
4: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
5: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
4: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
6: Caratino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
7: Leica Radio launches Birmingham-wide on DAB from September 1st. Leica Radio Network. Broadcasting across the UK with Asian stations.
8: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. That's 020-377-3633. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
9: Ye hai Leica Gold.

0: What a beautiful song. आपको भी याद आ गया, जरूर आ गया होगा कि जब आपकी विदाई का बेला था या फिर आपने किसी को विदा किया, खासतौर पर अपनी बेटी को। फिल्म का नाम था अर्पण, जी ओम प्रकाश जी ने बनाई थी ये फिल्म। फिल्म में काम किया था जितेंद्र ने, राज बब्बर थे, रीना रॉय एंड परवीन बाबू थे। फिल्म का संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। एंड इस खूबसूरत से गीत में दो आवाज़ें आपने सुनी, लता मंगेशकर एंड सुरेश वाडकर जी की। ऑफकोर्स गीत को लिखा था आनंद बख्शी साहब ने। और आज के प्रोग्राम का आगाज़ मैंने किया फिल्म डर के एक अनदर ब्यूटीफुल गाने के साथ। उम्मीद करती हूँ गीत को आपने पसंद किया। यश चोपड़ा जी ने बनाई थी ये फिल्म, उन्होंने डायरेक्ट की थी। एंड हनी ईरानी की ये स्टोरी थी और स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही लिखा था। एंड संगीत था शिव हरी जी का। ये फिल्म 24th of December 1993 में रिलीज हुई थी। और अर्पण कब रिलीज हुई थी आपको याद है क्या? 1st of April 1983 में। किसी ने बिलीव नहीं किया होगा कि इतनी प्यारी फिल्म आ रही है, राइट। और डर के कलाकार थे सनी देओल, जूही चावला थी एंड शाहरुख खान। और इसका वो किरण बहुत फेमस हुआ था, याद है ना आपको? सारे गाने इसके बहुत खूबसूरत थे। और उन गीतों को किसने लिखा था ये जानकारी भी आप तक पहुंचा देते हैं। इन गीतों को लिखा था आनंद बख्शी साहब ने। अब जरा आपसे पूछ लूँ, कैसे मिजाज हैं आपके? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को इंजॉय करें, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। और किसी वजह से अगर तबीयत आज ठीक नहीं है तो आपके लिए दुआ करती हूँ कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। किसी वजह से अगर फीलिंग लिटिल बिट डाउन तो कम ऑन, चीयर अप, लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू एंजॉय। जी और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते महकते और थिरकते हुए गाने तो चुन चुन कर लाती हूँ मैं। मेरी पसंद अक्सर आपकी पसंद भी बन जाती है और हर गीत के बाद आप मुझे अपने होने का एहसास भी दिलाते हैं। थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। और कल का प्रोग्राम मैं आपके लिए रिकॉर्ड करके गई थी, जैसा कि मैंने अपने प्रोग्राम में भी कहा था कि मैं लेस्टर मेला में हूँ। तो जाने से पहले सुबह सुबह मैंने उस प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया और आप तक पहुँचा दिया शाम को 4 बजे। और इनफैक्ट बीच बीच में मैंने भी अपना प्रोग्राम सुना और खूब मज़ा आया कि अपनी आवाज़ जब सुनते हैं, अपने किस तरह से पेश किया है प्रोग्राम, तो सुनकर अच्छा लगता है। लेकिन अपनी आवाज़ सुनना इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन गाने जो बजाए उनको प्रेजेंटेशन वो पसंद आती है। खैर आज के प्रोग्राम की बात करते हैं। आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ है। मेरी कोशिश तो है एक ऐसे महान गायक को आपके सम्मुख, यस, आप मैं रेडियो पर लेकर आऊं और उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाऊं। लेकिन आई कॉन्ट प्रॉमिस बिकॉज कभी कभी लाइन नहीं मिलती है, कभी कभी सेलिब्रिटीज़ नहीं अवेलेबल होते हैं, तो कोशिश रहेगी मेरी। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं हम।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: राइट, SBI UK वालों के जरिए अगर आप पैसे आज ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो 1 British sterling pound can get you 128 रुपीस एंड 65 पैसा, अप टू दैट अमाउंट। डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स कि कितने पैसे आप ट्रांसफर करा रहे हैं। डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच, ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप के जरिए। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on Leica Radio. Leica Radio. This part of the show is brought to you by Star Plus.
2: Previously known as Utsav Plus.
1: Sky Channel 705, Virgin Media 803 and BT 392.
3: लेस्टर तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्लेबैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 p.m. Show starts 7 p.m. Tickets book kare demontforthall.co.uk
4: ya Mumbai Sandwich Station on 0116 332 0262 or call Mr. B on 07860 280655. Exclusive radio partner, Leica Radio. Start.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: भाई मेरे वो साथी जो बराबर मैसेजेस भेज रहे हैं और पहचान गए हैं कि कौन सा वर्ड है जिस पर बेस्ड है आज के प्रोग्राम के फर्स्ट आवर के सारे गीत. थैंक यू एवर सो मच. बड़ी एफर्ट करते हैं आप, बड़े ध्यान से सुनते हैं, पहला ही गीत सुनते पहचान जाते हैं कि क्या होने वाला है प्रोग्राम में. थैंक यू सो मच. और ये गीत मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म कन्यादान. मोहन सहगल ने बनाई थी ये फिल्म. इसमें काम किया था शशि कपूर, आशा पारेख, ओम प्रकाश जी एंड पद्मा रानी भी थी इस फिल्म में. एंड फिल्म का संगीत बड़ा ज़बरदस्त शंकर जयकिशन ने बनाया था संगीत. एंड इस गीत में एक बुलंद आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब की थी. और ये गाना कितना मशहूर हुआ था ये आप सभी जानते हैं. और इस गीत को पर्टिकुलरली इस फिल्म के इस गीत को लिखा था गोपाल दास नीरज जी ने. नीरज जी ने बहुत कम गीत लिखे हैं लेकिन जितने भी गीत लिखे हैं बहुत मशहूर हुए. तो आइए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. एक और बहुत ही प्यारा सा गीत आप तक पहुंचा रहे हैं कोका नूडल्स वाले.
0: लाइका रेडियो टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: Keep track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: गीत आपने सुना, तीन देवियां फिल्म से चुना था इस गीत को, और इसमें काम किया था देवानंद, नंदा, सिमी ग्रेवाल, कल्पना मोहन एंड आईएस जौहर ने, एंड इस फिल्म का संगीत बहुत ही प्यारा एसटी बर्मन साहब का, और इस गीत में दो आवाज़ें जो आपने सुनी पहचान ली होंगी, किसकी आवाज़ें थी, याद आया या नहीं आया बता देती हूँ, किशोरदा थे और साथ में थी लता मंगेशकर जी की आवाज़। एंड एक्चुअली इस फिल्म के गाने कंपोज किए थे एस डी बर्मन साहब ने, लेकिन बहुत सी मदद की थी, असिस्ट किया था उन्हें आर डी बर्मन साहब ने भी। तो गीत आपको सारे पसंद आ रहे हैं, थैंक यू एवर सो मच, और आपने मैं अपने मियाँ मीठू नहीं बनती हूँ, पर आपने तारीफ की है मेरी भी, तो उसके लिए तहदिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, थैंक यू। इसी तरह से सुनते रहिएगा
2: Sarita Sabharwal with your weekend classics. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.
3: ये है
2: Leica Radio।
3: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 LBS सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू, और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99। फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE1 2JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE5 4UN।
2: One performer.
3: Countless personalities. A whole universe of entertainment. Sunil Grover live UK tour 2026.
2: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
3: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
2: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
3: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
2: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
4: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than Citybond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras. We've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
5: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.

0: listen to Laika Radio 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s.
1: अपने business को UK के largest Asian commercial radio network पर advertise करने के लिए call करें. Laika Radio Sales on 0116-471-0697 या email करें sales@laikamedia.co.uk.
2: अब होगा weekend और भी सुहाना. The Ritu Sharma Show में every weekend 10 AM to 1 PM on Laika Gold Radio, Laika Radio Greater Manchester and Laika Radio Midlands पर.

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने और दोनों गीत सैफ अली की फिल्मों से थे. सैफ अली मंसूर अली खान पटौदी इनका पूरा नाम. और ये मना रहे आज अपना बर्थडे. 16th अगस्त 1970 में इनका बर्थ हुआ था. इंडियन एक्टर है आप सभी जानते हैं एंड फिल्म प्रोड्यूसर हु प्राइमरली वर्कड इन हिंदी फिल्म्स एंड इन पटौदी घराने से हैं ये. आप सभी अच्छी तरह से इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं. एंड ही हैज़ won several awards including National Film Award and 7 Filmfare Awards and received the Padma Shri, the 4th highest Indian civilian award in 2010. He made his acting debut in Parampara, 1993 mein aayi thi film jiska geet aapne suna, and he had success in this multi-starrer film. Then uske baad Ye Dil Lagi 1994, Main Khiladi Tu Anari 1994 as well, and Kachche Dhaage inki release hui thi 1999 mein. Us film ka geet aap next hour mein sun payenge kyunki Manisha Koirala bhi apna birthday mana rahi hai. Par Manisha didn't pair with Saif Ali Khan. Manisha was she was paired with Ajay Devgan aur inke saath hi Namrata Shirodkar. I think so, naam main theek le rahi hu. Namrata Shirodkar thi us film mein. Us film ke bhi do gaano mein main badi confused ho rahi hu. Khali Dil Nahi ya phir aap sunna chahte hain Pyar Nahi Karna jahan sara kehta hai. Kaun sa geet aapke dil ke kareeb hai jaldi bata dijiyega taki main next hour mein play kar paun. राइट और हम साथ साथ हैं उस फिल्म का गीत सुना आपने. ये फिल्म आई थी 1999 में. उसके बाद की जितनी भी फिल्में हैं वो 2000 से बाद हैं तो मैं और कोई भी गीत आपको नहीं सुनवा पाऊंगी. लेकिन इन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया है आउटस्टैंडिंग लाइक दिल चाहता है कल हो ना हो हम तुम परिणीता सलाम नमस्ते तारा रम पम एक हसीना थी उसमें भी इनका काम बहुत अच्छा था ओमकारा वॉज अनदर फिल्म and Race then Race 2 Love Aajkal Cocktail aisi bahut si lambi list hai hamari taraf se Patodi sahab ko bahut bahut mubarak ho Saif Ali Khan happy birthday to you inse bhi mulaqat hui inhe bhi interview maine kiya hua hai and very well spoken very soft spoken and bahut izzat se baat karte hain. एनीवे सैफ को बहुत बहुत बधाई हो. और जितने भी मेरे साथी मुझे बराबर मैसेजेस लिख लिख कर कह रहे हैं ये गाना सुना दो या वो गाना तो आई एम सॉरी 90s में ही इन्होंने काम शुरू किया और 90s के ज़्यादा गीत हम प्रोग्राम में शामिल नहीं करते हैं. इनफैक्ट एक 90s और 80s का होता है बैक टू बैक पर मैंने आज दो गीत आपको सुनवा दिए. एंड नेक्स्ट आवर में भी दो गीत मैं सुनवाऊँगी एक कच्चे धागे से और एक किस फिल्म का होना चाहिए. वेल आपने अर्लियर ऑन जो प्यारे प्यारे गीत हैं मनीषा कोइराला पर पिक्चराइज हुए लाइक आज मैं ऊपर एंड आल्सो फ्रॉम 1942 अ लव स्टोरी वो बच चुके हैं आज हमारे यहाँ से. तो आई विल प्ले अ नाइस सॉन्ग फॉर यू. सुनते रहिएगा
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: जी हाँ इनके जरिए अगर आप पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो आप ब्रांच में जा सकते हैं ऑनलाइन कर सकते हैं या SBI Yono मोबाइल ऐप के जरिए पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं. बहुत काम आसान है और अगर आज आप इस वक्त का पैसे करवाना चाहते हैं तो बता दूं कि आपको बहुत अच्छा रेट भी मिल रहा है और रेट है 128 rupees and 60 paisas बट इट डिपेंड्स कि कितने पैसे आप ट्रांसफर करा रहे हैं. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Sarita Sabharwal with the biggest classics on Leica Radio. This part of the show is brought to you by Star Plus.
2: Previously known as Utsav Plus.
1: Sky Channel 705, Virgin Media 803 and BT 392.
3: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
4: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर Travel Mantra.
5: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
6: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
5: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
6: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
5: Get your tickets from royalalberthall.com and sanatanevents.org. Brought to you by Sanatan Events.
6: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
7: Kuch shaame calendar mein nahi, dil mein hamesha ke liye bas jaati hai.
8: इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लेकर आ रही हैं एक यादगार म्यूजिकल इवनिंग लाइव इन कॉन्सर्ट. Saturday the 5th of September at the Platinum Suite, Leicester. Apni seats aaj hi reserve kijiye. For more information, call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
9: Imagine turning your next cake box order into a magical family adventure. This August, every online cake box order is automatically entered into our prize draw to win a family trip for four people to Disneyland Paris. So celebrate birthdays, special moments and summer memories with Cake Box. And you could be celebrating in Disneyland too. Order online this August at cakebox.com. Cake Box. Celebrate today and make memories forever. TNCs apply.
10: The wait is over. Imran Hashmi returns in the next chapter of a cult classic, Awara Pan 2.
11: Usne mujhe chua, par apna aayenge. To phir
10: now in cinemas. For your nearest cinema listings, visit Bakronia Media on Instagram.
12: Hey, friends ke saath weekend party ho ya khud ke saath Netflix and chill. A desi tadka is total risk, hai na?
13: Well, she's talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
12: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
1: Leica Radio launches Birmingham-wide on DAB from September 1st.
14: It's a dog walk. I do it every day at home. I don't need to plan it. Check the tide. Check my phone. Why do I need to take my...
15: Hey, boy!
16: Coast Guard, we're stuck.
17: OK, help's on its way.
16: Hold on, mate.
18: Shoes, tide, phone.
19: Back before dark, love. OK.
20: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please respect the water.
21: Location, location, location.
22: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
21: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
22: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
21: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
22: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
21: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
22: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
21: High appreciation.
22: In Dubai.
1: Listen back to your favorite shows by logging on to LeicaRadio.com and selecting Midlands or the mobile app. Leica Cool. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play Leica Gold aur online suno leicagold.com pe. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
23: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: ये खूबसूरत सी आवाज आपने सुनी हेमलता जी की, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेबैक सिंगर्स ऑफ 1970s एंड 80s एंड हु इज रिमेम्बर्ड फॉर हर मेलोडियस वॉइस एंड सॉन्ग्स लाइक तारे कितने नील गगन पे तारे, जब दीप चले आना, इसके अलावा अखियों के झरोखे से आपने सुना तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है और कौन दिशा में लेके चला रे बथुया। इसके अलावा भी बहुत सारे गीत हैं पर इस आवाज़ का आज अब बर्थडे मना रहे हैं हम। कौन है जिनका हम बर्थडे मना रहे हैं? ये है हेमलता जी और आई एम सो लकी। मैंने इन्हें अर्लियर ऑन मैसेज किया था कि हेमलता जी आज आपका बर्थडे है, मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। तो मैंने कहा आई वुड लव टू हैव यू ऑन एयर। तो देखिए ये आवाज़ आप तक पहुंचा रही हूँ। हेलो हेमलता जी, कैसी हैं आप? हेलो,
1: थैंक यू सो मच विशिंग मी। मैं अच्छी हूँ, ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपसे बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। जब कभी भी मैंने आपको मैसेज किया है आपने हमेशा जवाब दिया है और हमेशा मुझसे बात भी किया है। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी अपने सभी लिसनर्स की तरफ से भी कि आप ऑन एयर आई हैं। किस तरह से मनाया आज आपने अपना बर्थडे?
1: आज का बर्थडे जो है ये मेरा 73rd बर्थडे है।
0: जी जी।
1: और 15 तारीख की रात के 12 बजे से लेकर अब तक
0: फोन
1: जितने टेलीफोन इतने टेलीफोन्स और इतने विशेष इतने ब्लेसिंग्स इतना ढेर सारा प्यार।
0: जी जी बिल्कुल। आप
1: ये सब सुनकर यही फीलिंग आती है कि एक आर्टिस्ट को इससे बढ़कर और क्या चाहिए ना।
0: बिल्कुल कुछ नहीं।
1: तो ये सच्ची कमाई है
0: जी
1: और इसको मैं अपनी खरी कमाई कहती हूँ।
0: तो आप लंदन कब आ रही हैं?
1: देखो लंदन अब पता नहीं कुछ संजोग नहीं बन रहा है।
0: संजोग नहीं बन रहा है, चलिए।
1: सरिता अभी पहले की तरह हमारे यहाँ शोज नहीं होते हैं।
0: जी जी जी,
1: पहले जिस तरह होते थे
0: जी,
1: क्योंकि हम लोग आर्टिस्ट लोग सारे इकट्ठे जाते थे
0: जी
1: शोज कर। मैंने लंदन में तो इतनी बार ऐसा हो गया था कि जैसे लोकल शोज कर रही हूँ।
0: या लेकिन अब काफी अरसा हो गया आप आए नहीं हैं, तो इसीलिए मैंने पूछा कि कब आने वाली हैं आप लंदन में।
1: देखो कोई मौका लगे कुछ है।
0: बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ आपने गाए हैं गीत, रफी साहब हों, आशा जी, लता जी के साथ, तो आप सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किसके साथ रहा आपका?
1: नहीं नहीं, हम लोगों को इक्वली उसमें आते थे। मैं तो मेरा सबसे पहला शो जो था
0: जी जी
1: मतलब लता जी के बाद दूसरा
0: जी जी
1: आर्टिस्ट अगर कोई गया था और मैं और महेंद्र कपूर।
0: हाँ जी, बहुत आपने शोज किए।
1: हम लोगों ने गाया था
0: जी।
1: व्हाट वाज अ वंडरफुल
0: एक्सपीरियंस था। हाँ जी, बहुत अच्छा जी।
1: हाँ सर, मिक्स ऑडियंस आती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: फिर उसके बाद तो मैंने दो बार और गाया रॉयल अल्बर्ट हॉल में
0: जी,
1: वेम्बली अरेना।
0: बिल्कुल याद है मुझे, वेम्बली कॉन्फ्रेंस होता था तब जी।
1: मैनचेस्टर में गाया, मैनचेस्टर में गाया, बर्मिंगहम में गाया
0: जी।
1: तो फिर इतने अनकाउंटेबल बार गाया, लेकिन पिछले कुछ सालों से
0: जी नहीं आना।
1: यहाँ म्यूजिक वर्ल्ड का थोड़ा
0: चेंज हो गया,
1: जैसे बदलाव हुआ है।
0: या
1: क्योंकि पहले हमारे ग्रुप्स होते थे।
0: हाँ जी।
1: तो हमारा कॉम्बिनेशन होता था, मैं और रफी साहब
0: जी
1: या मैं और महेंद्र कपूर, उनके साथ काफी काम किया,
0: बहुत काम किया। हेमलता जी, दिल तो चाह रहे कि आपसे बात करती रहूं लेकिन मुझे अब अपनी बातचीत को यहीं समाप्त करना होगा। और मैंने गीत जो क्यों किए हैं वो एक चित चोर का है, तू जो मेरे सुर में, और दूसरा चंदा को ढूंढने, सितारे चले गए, एंड देन ले चल मेरे जीवन साथी। तो आप एक लाइन किस गाने की, ले चल मेरे जीवन साथी, एक लाइन गाएंगी हमारे लिए?
1: सरिता मेरी इस वक्त आवाज बहुत खराब हो रही है।
0: अच्छा कोई बात नहीं, कोई नहीं, मैं गाना सुनवा दूंगी।
1: मेरे घर में पेंटिंग का काम चल रहा है।
0: ओके, तो वो फ्यूम से उस
1: तो
0: आपको
1: रहे। पहले कुछ प्राइमर लगाया जाता है, यू बिलीव मी?
0: जी जी आई डू बिलीव यू, थैंक यू।
1: मेरे बुरे हाल है,
0: हाँ,
1: खास खास के मेरे और आंखों से ऐसे पानी आ रहा है, ऐसा लगता है जैसे मैं रो रही हूँ।
0: चलिए, यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार।
1: मैं आपकी फरमाइश जरूर पूरी करूंगी।
0: हाँ जी,
1: टुडे आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटिफुल मैसेजेस एंड से माई हेलो
0: टू एवरीबडी
1: एंड नमस्ते टू योर ऑल
0: ऑडियंस, जितने भी सुनने वाले हैं सभी को, और आपके फैंस को। जी थैंक यू सो मच,
1: यहाँ लाने वाले जहाँ मैं हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू एवर सो मच। ओके, फिर मैं बात करेंगे। अब आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपके कुछ गाने सुनवाते हैं। थैंक यू हेमलता जी, वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू। बाय बाय बाय, नमस्ते।
2: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली।
3: हैप्पी हलवाई ब्रिंग्स योर टेस्ट बड्स ओडल्स ऑफ हैप्पीनेस विद ऑथेंटिक गुलाब जामुन, रसमलाई, मोतीचूर लड्डू एंड मच मोर। विजिट happyhalwai.com।
2: सरिता सबरवाल विद द बिगेस्ट क्लासिक्स ऑन Like a radio.
0: और भाई, यही मैं आप सभी को कुछ याद दिलाने जा रही हूँ, और याद ये दिलाने जा रही हूँ कि बहुत से शोज हो रहे हैं। उदित नारायण, आदित्य नारायण लाइव आ रहे हैं, और 20th December को संडे का दिन होगा, ओवो अरीना में वो दोनों परफॉर्म करने वाले हैं। टिकट मास्टर से टिकट्स बुक करा सकते हैं। AXS और एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइका रेडियो नेटवर्क। सुनील ग्रोवर आ रहे हैं एंड ही इज कमिंग ऑन थर्सडे 29th October को इन लेस्टर एट मैच्योल अरीना ऑन संडे 31st October को। वेम्बले में होंगे ऑन 29th October को। टिकट सेम आप AXS से ले सकते हैं, इवेंट ब्राइट एंड टिकट मास्टर से खरीदी जा सकती हैं।
2: Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now. Sarita Sabharwal with the biggest classics on Leica Radio.
0: हिमलता जी की आवाज आप तक पहुंचा रही हूं। बहुत प्यारा गीत है। इसकी दो वर्जन थी, दो भी नहीं बल्कि तीन वर्जन थी। हिमलता जी ने गाया था, रफी साहब ने गाया, और मनहर रुदास जी ने गाया था। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। गाना बहुत लंबा है, मैं पूरा नहीं सुनवा पाऊंगी क्योंकि बातचीत लंबी थी, लेकिन एंजॉय कीजिएगा।

0: ऐसे बहुत से यादगार गीत हैं जिनमें अपनी आवाज दी हेमलता जी ने। न सिर्फ फिल्मी गाने गाए हैं इन्होंने, रामायण जैसे एपिक में भी बहुत से गीत गाए, टीवी सीरियल्स में उत्तर रामायण में श्री कृष्णा, और भी बहुत सारे प्राइवेट एल्बम्स इनकी रही। उम्मीद करती हूँ गीत आपको पसंद आ रहे हैं।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, अगर आप पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं आज तो काम बड़ा आसान है। और कितने पैसे आपको मिल सकते हैं ये भी जान लीजिएगा। इंडियन रुपीस एक पाउंड के बदले 129.15 एंड पाकिस्तानी रुपीस 375.40 एंड श्रीलंकन रुपीस 450.30 एंड बांग्लादेशी टका 166.16।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Summerwall with the biggest classics on LIKA Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: It's £104.06 per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278. Leica Radio. Leica Radio.
2: This part of the show is brought to you by Star Plus.
3: Previously known as Utsav Plus.
2: Sky Channel 705, Virgin Media 803 and BT 392.
4: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फैल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फैल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 LBS सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 pieces शुरू। और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99।
5: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइज 10 स्ट्रीट वेस्ट लेस्टर LE12JU एंड 2A रोलआउट सेल लेस्टर LE54UN।
6: लेस्टर तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्लेबैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
7: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
8: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and the Duran Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting Desi twist.
9: Be sure to catch the show across the Midlands. The Belgrade Theatre Coventry, Thursday the 16th to Sunday the 19th of July. And at the Crescent Theatre Birmingham, Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October.
8: Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Start to

0: taking you to the best destinations in the world.
1: Right, आपको बता दें कि इस वक्त बाहर कितना टेम्परेचर चल रहा है, 23 डिग्री सेल्सियस एंड लंदन और आसपास के इलाकों में एंड लाइट क्लाउड्स एंड लाइट विंड्स भी चल रही हैं। कल मंडे है तो कल 26 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, तो ज़रा संभल के ही बाहर निकलिएगा। एंड मैनचेस्टर में, मिडलैंड्स में भी अच्छा मौसम है। मैनचेस्टर में 20 डिग्री सेल्सियस है तापमान और इट विल गो डाउन टू 14। लाइट विंड्स भी चल रही हैं, क्लाउड भी हैं। एंड मिडलैंड्स में लाइट क्लाउड्स एंड जेंटल ब्रीज, 26 डिग्री मैक्स एंड लो विल बी 17। और कल का मौसम भी ऐसा ही है, 24 डिग्री सेल्सियस रहेगी टेम्परेचर। तो अब ये तो सरिता हमेशा की तरह आपको जरूर कहेगी, अपने दिल का मौसम अच्छा रखिए, बाहर का मौसम जैसा भी हो।
0: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410. Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits. Sarita Samawal.
1: सरिता आपकी सेवा में हाजिर है। प्रोग्राम के लास्ट एंड फाइनल आवर में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ पिछले आवर आपने पसंद किए। दोनों आवर्स में अच्छे अच्छे गीत थे शामिल, हेमलता की आवाज़ में गाए हुए, और कोशिश रहेगी जो गीत मैं नहीं शामिल कर पाई इस आवर में ज़रूर आप तक पहुँचा दूँ। आज मनोरमा जी की भी बर्थ एनिवर्सरी है। मनोरमा जी ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया लेकिन कोई गाना उन पर पिक्चराइज हुआ है और आप जानते हैं तो मुझे ज़रूर बता सकते हैं। और वो जो फिल्म, दो फिल्में हैं, तीन फिल्में एक्चुअली, जो आज ही के दिन रिलीज़ हुई और उनके गीत शामिल करने की मैं ज़रूर कोशिश भी करूँगी। आइए सुनते हैं दो बैक टू बैक गाने, लेकिन मैंने चॉइस देनी है आपको कच्चे धागे का, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं, खाली दिल नहीं या फिर प्यार नहीं करना जहाँ सारा कहता है, कौन सा गीत आपको ज़्यादा पसंद है ज़रूर बता दें। मनीषा कोइराला का बर्थडे है, पहला गीत चुना है बॉम्बे से और दूसरा गीत कच्चे धागे का। जल्दी से मुझे जवाब दीजिए।
0: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Sarita Sabawal.

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने और मुझे उम्मीद है दोनों के दोनों गीत आपने ज़रूर पसंद किए होंगे। पहला गीत मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म बॉम्बे। बॉम्बे मनीषा कोइराला की फिल्म थी, मनीषा कोइराला हीरोइन थी इस फिल्म की, और फिल्म क्या बताऊँ, इतनी खूबसूरत फिल्म थी। मनी रत्नम जी ने जिसे डायरेक्ट किया था एंड अरविंद स्वामी इनके साथ स्टार किए थे मनीषा कोइराला के साथ। बहुत खूबसूरत कहानी थी एंड AR रहमान साहब का संगीत भी बेहद पसंद किया गया था एंड बहुत सी अप्रिसिएशन मिली थी मनीषा कोइराला को। हुई सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे टुडे, तो हमारी तरफ से मनीषा कोइराला को ढेर सारी मुबारकबाद। बता दूं कि बॉम्बे के लिए बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे एंड इनकी एक्टिंग को भी बहुत सराहा गया था। तो मनीषा कोइराला बेस्ट एक्ट्रेस तमिल में जो वर्शन बनी थी उसमें मनीषा कोइराला को अवार्ड मिला था एंड जो हिंदी में बनी थी उसके लिए आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि मनीषा कोइराला को यस बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था 1995 में मनीषा कोइराला को एंड ऑल्सो स्पेशल अवार्ड टू अरविंद स्वामी एज वेल। और AR रहमान साहब को, मनी रत्नम जी को, सभी को बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे। मनीषा कोइराला इज सेलिब्रेटिंग अ बर्थडे, तो हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। कच्चे धागे का दूसरा गीत था जिसमें दो आवाज़ें आपने सुनी, अलका याग्निक एंड हंसराज हंस जी की। एंड इसके पीछे एक स्टोरी है अगर आप कहें तो मैं बता देती हूँ। वैसे हंस जी भी इस बात को ज़रूर एग्री करेंगे और उन्होंने कहा भी है बहुत दफ़ा। आई वॉज गोइंग टू कॉम्पियर शो इन जर्मनी और नुसरत फ़तेह अली खान साहब का शो था, चैरिटी शो, एंड साथ में राहत फ़तेह अली खान भी थे। तो जब मैं जा रही थी, बाय चांस हंस जी यहीं लंदन में थे, तो उन्होंने मुझे अपनी एक कसेट दी और कहा कि ये नुसरत फ़तेह अली खान साहब को दे देना। मैंने उन्हें जर्मनी में जाके वो कसेट दे दी। उसके 5-6 महीने बाद ही, ये 94 की बात है, तो 95 में आई थी ये फिल्म, 99 में आई थी, यानी वे गाने पहले से ही रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो कुछ देर बाद ही हंस जी की आवाज़ हमने सुनी। नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने इस गीत को कंपोज़ किया था और उन्हें बहुत पसंद आई थी हंसराज हंस जी की आवाज़। तो ऐसी सबब बनते हैं कभी कभी, आप किसका कोई ज़रिया बन जाते हैं। सो आई एम नॉट गिविंग क्रेडिट टू माई सेल्फ, लेकिन मैं इतना बता रही हूँ कि मैंने इनकी कसेट दी थी नुसरत फ़तेह अली खान साहब को कि आप प्लीज़ सुनिएगा ज़रूर। खैर, बात हो रही है मनीषा कोइराला की, तो मनीषा कोइराला का आज बर्थडे है, उन्हें हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी दूंगी एंड उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी वैसे तो आपके पास ज़रूर होगी। शी वॉज बॉर्न ऑन 16 अगस्त 1970 में, नेपलीज एक्ट्रेस हु वर्क्ड इन इंडियन फिल्म्स एज वेल। तमिल फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है एंड पहली फिल्म इनकी नेपलीज फिल्म ही थी, फेरी भटियाला 1989 में आई थी। देन सौदागर्स में सुभाष घई साहब ने इन्हें लॉन्च किया था, विवेक मुश्रान थे शायद इस फिल्म के हीरो एंड दिलीप कुमार एंड राजकुमार दोनों फिल्म पैगाम के बाद आफ्टर 35 इयर्स एक साथ स्टार हुए थे 91 में एंड इस फिल्म का नाम था सौदागर। उसके बाद इनकी जब फिल्म आई बॉम्बे 95 तो धूम मचा दी मनीषा कोइराला ने। शी लुक सो ब्यूटीफुल एंड शी एक्टेड सो वेल इन दैट फिल्म, अग्नि साक्षी, इंडियन गुप्त, द हिडन ट्रूथ एंड कच्चे धागे, इसके अलावा कंपनी इन 2002, 1942 अ लव स्टोरी अगेन वाज अ ब्यूटीफुल फिल्म एंड अकेले हम अकेले तुम, खामोशी वाज अ वंडरफुल फिल्म। दिल से में इनका काम बहुत अच्छा था, लज्जा में बहुत खूबसूरत लगी, बहुत अच्छा काम था इनका। ऐसे बहुत, लिस्ट बहुत लंबी है, हमारी तरफ से इन्हें बहुत बहुत बधाई हो।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Aaj one British sterling pound can get you 128 rupees and 65 paisas. Agar aap paise bhejenge SBI Yono ke द्वारा SBI वालों के माध्यम से. तो डोंट फॉरगेट यू कैन एक्सचेंज मनी इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप है तो घर बैठे ही पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. TNC applies.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. Sarita Summerwall with the biggest classics on Leica Radio. This part of the show is brought to you by Star Plus.
2: Previously known as Utsav Plus.
1: Sky Channel 705, Virgin Media 803 and BT 392. One performer.
2: Countless personalities. A
1: whole universe of entertainment.
2: Sunil Grover, live UK Tour 2026.
1: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
2: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Babi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
1: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
1: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
3: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
4: कुछ लोगों की कहानियाँ उनकी मर्जी से खत्म नहीं होती.
2: A story of love, redemption and second chances returns to the big screen.
4: दर्द से पुराना रिश्ता है मेरा.
2: Imran Hashmi is back in the much awaited sequel Awarapan 2.
4: इस बार या तो ये आवारापन खत्म होगा या मैं.
2: Witness powerful emotions, breathtaking action, and a soundtrack that stays with you long after the credits roll. Now in cinemas. For your nearest cinema listings, visit Vikrania Media on Instagram.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: After the smash hit run in 2025, Surrenderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist.
8: Be sure to catch the show across the Midlands. The Belgrade Theatre Coventry, Thursday the 16th to Sunday the 19th of July. And at the Crescent Theatre Birmingham, Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September. And Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October.
7: Click rifkotheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight.
9: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at 3 Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton 3 Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
10: Caratino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
11: You're both on the same road, same tarmac, same rules, just a different number of wheels. Motorbikes aren't in your way, they're on their way, just like you. So use your mirrors, check before you manoeuvre, and be aware of motorbikes. Because when we look out for each other, everyone gets where they're going safely. Motorbike safety, it's on all of us. National Highways.
12: If you see somebody showing any of the signs of a stroke, you don't have to think about it, you just dial 999. Use the FAST test. F, face, has their face fallen on one side? Can they smile? A, arms. Can they raise both arms and keep them there? S, speech. Is their speech slurred? T, time. Time to call 999 if you see any one of these signs. Act fast, make the call, dial 999.
1: This is the largest commercial Asian radio network in the UK.
13: Laikagun, officially London's number one Asian Retro Music Station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and Laikagun.com.
1: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: फिल्म जिगरी दोस्त से चुना था मैंने इस गीत को। फिल्म में काम किया था जितेंद्र एंड साथ में थी मुमताज एंड पूनम सिन्हा। रविकांत नगरेचा ने बनाई थी इस ये फिल्म और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का। लता जी का गाया हुआ ये गीत साथ दे रहे थे मोहम्मद रफ़ी साहब। ये आर्टिस्ट ऑफ द वीक में हमने गीत चुना, उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया।
1: LYCA This is Laika. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: लता जी की ही आवाज़ से और इनकी आवाज़ में आवाज़ मिला रहे हैं सुरेश वाडकर। राम तेरी गंगा मैली इस फिल्म से मैंने चुना है इस गीत को। और ये गीत इसलिए चुना गया है आज के दिन क्योंकि 16 अगस्त 1985 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसे डायरेक्ट किया था राज कपूर साहब ने। राज कपूर साहब ने ही स्टोरी लिखी थी एंड रणधीर कपूर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। राजीव कपूर एंड मंदाकिनी ने इस फिल्म में काम किया था। रविंद्र जैन का था संगीत।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: This is Leica Radio across the Midlands.
2: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.
3: और अब मैं शामिल करने जा रही हूँ वो गीत जिसकी फिल्म आज ही के दिन रिलीज हुई थी 16th of August 1991 में. माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर ने इस फिल्म में काम किया था. टी रामा राव ने बनाई थी ये फिल्म और भप्पीदा का संगीत, आवाज़ है मोहम्मद अजीज एंड आशा भोसले.

0: Dates for the Midlands at Breakfast and Drive.
1: Like our radio.
2: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का Perfect Destination. Rakhi और Ganesh Idols अब available हैं सभी Falcon Stores पर. Onam संध्या के लिए pre-bookings भी शुरू हो चुकी हैं. Falcon Snacks 300 grams की full range सिर्फ £1.99 each. Mustafa Dehraduni Rice 20 lbs सिर्फ £13.49. Suhana Khaman Thokla 500 grams सिर्फ £1.99 each या 2 for £2.99. Tilda Grand Basmati 20 kgs सिर्फ £29.96. S Motiram Namkeen अब सिर्फ 99p से शुरू. और हर्जमन बटर की 20 केजी सिर्फ 10.99.
3: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE1 2JU एंड 2A रोलॉट सेल लिस्टर LE5 4UN.

0: Tasty Track of the Hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: This is Leica Radio across the Midlands. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: By LemFi ke zariye aapko mil sakte hain 1 pound ke badle Indian rupees 129.17, Pakistani rupees 375.40, Sri Lankan rupees 450.15, Bangladeshi taka 166.8, Afghanis 88.51.
3: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on Leica Radio.
3: Leica Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
2: It's £104.06 per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
3: Leica Radio.
4: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7am Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: जी हाँ, आप सुन रहे हैं लाइगर रेडियो नेटवर्क के जरिए ये आवाज आप तक पहुंचती रही. पिछले तीन घंटे से आपने मेरा साथ दिया. मेरा और आपका साथ है अभी 7 बजे तक और अभी 10 मिनट बाकी बचे हैं. और मेरे बाद आ रहे हैं सैंडी शाह विंटेज गोल्ड प्रोग्राम लेकर. मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको हेमलता जी से. मेरी बातचीत भी पसंद आई, जिसके लिए मैं तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ. एंड सारे गाने बहुत अच्छे लगे. विजय गनोवा जी ने बहुत सारे मैसेजेस भेजे. और अगर कल आप नहीं सुन रहे थे प्रोग्राम और परसों नहीं सुन रहे थे, तो मैं बता दूं कि परसों यौम आज़ादी मनाया गया, पाकिस्तान का दिन था, और कल इंडियन इंडिपेंडेंस डे मनाया गया. सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई, बिलेटेड, क्योंकि कल के प्रोग्राम में भी मैंने आपको बधाई दी थी, लेकिन समहाउ यू मिस्ड इट. एनीवे, अब मेरे जाने का वक्त है. मेरे बाद आ रहे हैं सैंडी शाह हियर. एंड दूसरी तरफ लाइका रेडियो पर आप सुनेंगे नीरज की आवाज़, और मैनचेस्टर में हम आपके साथ होंगे. जैसे हैव अ लवली वीकेंड.
5: दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय स्टार प्लस,
6: प्रीवियसली नोन एज उत्सव प्लस,
5: स्काई चैनल 705, वर्जिन मीडिया 803 एंड BT 392.
7: लिटिल गरबा स्टार्स तैयार थे जाओ. KDR इवेंट्स एंड बीच प्रमोशन प्राउडली प्रेजेंट्स किड्स गरबा 2026 विद लाइव फ्रॉम इंडिया. सैटरडे 17 अक्टूबर बपोरे 1-4 एट अवंती फील्ड स्कूल, लेस्टर. 1-10 वर्ष ना किड्स माटे एंट्री जस्ट £5. टिकट्स अवेलेबल फ्रॉम टिकट सोर्स और कॉल पीचेस 07957477330. मस्ती, म्यूजिक एंड फुल ऑन गरबा फन. रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो.
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.

0: ਪੇ ਅਤੇ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
1: All Mamster products are nut free and made in Canada now available at your nearest Asian grocery store भोजपुरी बवाल
2: पवन जी मैंने सुना है आप दोनों के रिलेशंस अच्छे नहीं है
3: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो
4: कहां सही झगड़ा चला था भाई
1: द ब्रांड न्यू रियलिटी टीवी शो भोजपुरी बवाल मंडे टू संडे एट 10 PM ऑन कलर्स टीवी
5: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी सब कुछ फ्रेश और टेस्टी लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड LE4 5AS कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में
6: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
7: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit HeartyHanks.com today.
8: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows. Sarita Summerwall with your weekend classics.

0: is brought to you by Rahm Jewellers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
1: Let's check in on the latest gold rates for you here on your Leica Radio Greater London, Leica Radio Midlands. Gold currently trading at £104.07 per gram. We'll keep you up to date with the latest gold rates on your Leica Radio.
0: Rahm Jewellers, specialising in diamond jewellery, platinum jewellery, 22 karat gold, white gold jewellery, coins and gold bullion bars. Visit Rahm Jewellers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
1: Great stuff there from Ruslan, and we got a 90s throwback to finish things off around the corner.
0: Niraj on the Sunday Showdown, proudly sponsored by ticketstoindia.co.uk. For the best rates, book online or call 020 8518 9100. Bringing India closer.
2: This part of the show is brought to you by Star Plus,
3: previously known as Utsav Plus.
2: Sky Channel 705, Virgin Media 803 and BT 392.
4: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का Perfect Destination. राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी Falcon Stores पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं. Falcon Snacks 300 grams की फुल रेंज सिर्फ £1.99 each. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 lbs सिर्फ £13.49. सुहाना खमन ठोकला 500 grams सिर्फ £1.99 each या 2 for £2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ £29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99p से शुरू और हर्जमन बटर घी 20 kg G sir 1099.
5: Falcon Cash and Carry 82A, Size 10 Street West, Leicester, LE12JU and 2A Rollout Sale, Leicester, LE54UN.
6: कुछ शामें कैलेंडर में नहीं, दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं. इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लेकर आ रही हैं एक यादगार म्यूजिकल इवनिंग लाइव इन कॉन्सर्ट. Saturday the 5th of September at the Platinum Suite, Leicester. Apni seats aaj hi reserve kijiye. For more information, call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन.
8: हिस्ट्री डिवाइडेड अ नेशन बट कुड नेवर डिवाइड ह्यूमैनिटी.
9: कौन सी आजादी और किसका मुल्क.
8: विटनेस द एपिक रियूनियन ऑफ सनी डियोल एंड राजकुमार संतोषी इन बटवारा 1947.
10: वो माँ है माँ, माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए.
8: स्टारिंग शबाना आजमी, प्रीति जिंटा, करण डियोल एंड अली फजल.
10: और बच्चे के मुंह से निकला पहला लफ्ज माँ है.
8: प्रोड्यूस्ड बाय आमिर खान. एक्सपीरियंस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ करेज एंड होप बटवारा 1947 नाउ इन सिनेमाज.
11: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Siddhayu, now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham. Siddhayu, Ayurveda that fits your life. Creative's Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali on Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham, a memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
8: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
0: Leica Radio launches Birmingham wide on DAB from September 1st.
11: Cutthroat Ke Khiladi, Saturday and Sunday at 8 p.m. on Colors TV. Powered by Star Tours, associate sponsor Lioncroft.

0: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
1: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे'ल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साफो ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।

0: breezing you through the night with the Midlands' biggest Asian hits on Leica Radio.
1: दबी दबी सांसों में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया, पलके झुकी

0: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं? तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
1: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02030 3773633 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
2: Imagine turning your next cake box order into a magical family adventure. This August, every online cake box order is automatically entered into our prize draw to win a family trip for four people to Disneyland Paris. So celebrate birthdays, special moments and summer memories with Cake Box. And you could be celebrating in Disneyland too. Order online this August at cakebox.com. Cake Box. Celebrate today and make memories forever. T&Cs apply.
3: नाम क्या है?
4: हमजा अली मजारी।
5: Durandar, 15th and 16th of August at 9 PM on Star Gold. Title sponsor Watchdog Security. Associate sponsor Lemfi.
6: Leica Radio Network, proud hospitality partner Ragasan.
7: बहुत पढ़ाई किया है ना तूने? तो एक सवाल का जवाब दे।
8: पूछ ही लो सर।
7: साल के कितने महीने में 28 दिन होते हैं?
8: फरवरी सर।
9: सर साल के हर महीने में 28 दिन होते हैं।
5: इंडिया के टॉप 1% स्टार्ट्स दिस सितंबर ऑन स्टार प्लस।
7: इंडिया के टॉप 1% सिर्फ डिग्री नहीं दिमाग भी जीतेगा।
10: यू प्रोबेबली थिंक यू आर प्रीटी गुड एट मल्टीटास्किंग बिहाइंड द व्हील। आई मीन यू हैव टू मल्टीटास्क टू ड्राइव, सो व्हाट्स रॉन्ग विद चेकिंग योर फोन? द थिंग इज योर ब्रेन सिंपली quick reply, affects your concentration, and makes you less able to react to hazards. If you use a mobile phone while driving, you're 4 times more likely to crash. Think. Put your phone away.
11: It was just another day. A familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
12: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed.
6: The greatest Asian love songs across the Leica Radio Network.